0: Hear the voices of Te Tohu through local programs, stories, and podcasts at freshfm.co.nz. It's 1 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: वर्ड इज पावर, इट कैन चेंज योर लाइफ। ग्रीटिंग्स एंड किया ओरा कोउतौ। आई एम तानिया, योर फ्रेश एफएम होस्ट ऑफ द वर्ड इज पावर शो, स्पीकिंग, हियरिंग, मेडिटेटिंग, एंजॉयिंग गॉड्स वर्ड एवरी मंडे एट 7 PM विद अ रिपीट एवरी सेकंड वीक। गेट रेडी, दिस कुड बी द शिफ्ट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। Listen on air, online, or catch the podcast anytime.